0: मन की इच्छा पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ।
1: सब गुण तेरे मैं नाही कोई बिन गुण कीते भक्त ना होए।
0: स्वस्थ आत्म वाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ।

0: रावण जति सती संतोखी गावे वीर करारे
1: रावण पंडित पंडर खीसर जुग जुग वेदा नाले
0: गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मश प्याले
1: रावण रत्नों पाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले
0: गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे
1: गावे खंड मंडल पर पंडा।

0: सगळ्या पौलिख्या सरळेख नानक निरभउ निरंकार सचे महला पहला
1: नानक निरभउ निरंकार किते राम रवाल कितिया कन कहाणियां किते वेद विचार किते नचे मगते गिणमिण पूरे ताल बाजारी बाजार मैं आई खड़े बाजार गावे राजे राणियां बोले अल्पताल लख टक्या के मुद्र

प्रभु को सिमरे से जन परवान, प्रभु को सिमरे से बेह मोत आजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, सिमरन ते लागे जन आप दयाला, प्रभु को सिमरे से पर उपकारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन

अगंत सा अपनी दे रास अपने अमान किश बहर सहले अपने प्रतीत आप भी खोवे जिसके वास्ते आगे राखे उसे चौगुण करे।

जे प्रसाद सुने कर नाद, जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद परम गत पावे, ऐसा प्रभ त्याग अबरकत लागो, जे प्रसाद तू

0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान,
1: ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान,
0: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस,
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश,
0: ब्रह्म ज्ञानी के गरीब स्वमाहा।

0: अध्याखर
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी के मित कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुग जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण भक्त विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का आथ
1: ब्रह्म ज्ञानी सब

0: छुटै।
1: संत के दुखन सुख सब जाए,
0: संत के दुखन नरक में पाए।
1: संत के दुखन मत होए मलीन,
0: संत के दुखन सोभा ते हीन।
1: संत के हतेक रखे ना कोए,
0: संत के दुखन थान प्रष्ट होए।
1: संत कृपाल कृपा जे करे,
0: नानक संत संग निंदक भी तरे।
1: संत के दुखन ते मुख पवै,
0: संतन के दुखन काग जे लवै।
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
0: संत के दुखन त्रिक जोन किरवाए।
1: संतन के दुखन तृष्णा में जले,
0: संत के दुखन सब पोषले।
1: संत के दुखन तेज सब

0: संत का दुखी अद बीत ते टूटे,
1: संत का दुखी किते काज ना पूटे,
0: संत के दुखी को उद्यान परमाइए,
1: संत का दुखी उजड़ पाइए,
0: संत का दुखी

सोदत सोदत सोदत छिजया जब देखो त सब कछ मूल न किछ जन्मे न किछ मरे आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट आपे आप सगल मैं आप अबनासी नाही किछ खंड लख अभेव पुरख प्रताप।

0: सब भवन
1: नाम के संग उतरे सुन सरण
0: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
1: चौथे पद में सो जन गत पाए
0: रूप सत जाका सत अस्थान
1: पुरख सत केवल
0: करतूत सत सत जाकी बाणी
1: सत पुरख समाए।

आप जपो अवरह नाम जपावो सार भूत सत हर को नाओ गुण गावर तेरे उतर छमैल हुए अचैंत बसे सुख नाल।

0: कवन निकट कवन कहिए दूर
1: आप भरपूर
0: अंतर्गत जिस आप जनाए
1: जने आप
0: सर्व भूत आप बरतारा
1: सर्व नैन आप देखन